उस सेवक को कोई भी दुख पौंदा नहीं जिस सेवक के सिर पर सतगुरु का हाथ होता है। सतगुरु जी बाणी च फरमान करते हैं, सब सहे ऊपर नजर प्रभ तेरी, किसे थोरी किसे है कनीरी। निगाह सतगुरु की सब दे ऊपर है, कृपा बरस रही है।

नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन

रहाओ। सब सुरती मेलो सुरत कमाई, सब कीमत मेलो कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखा किया वड्याईया। तुद विण सिद्धि किने ना पाईया, कर्म मिले नाही ठाकर हाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देहे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै।

रहाऊ। साचे नाम की तिल वडे आई, आथ थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलके आखण पाहे, वड्डा ना होवे घाट ना जाए। ना ओह मर ना होवे सोग, देंदा रहे ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। जेवड आप तेवड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खसम विसार है ते कमजात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सतगुर सत पुरखा। बिनौ करो गुर पास, हम कीरे केरम सतगुर शरणा।

आपे भुगता जी, हों तो दबेन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत, बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेवा है जो सेवा है तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावै हर त्यावै तुद जी, से जान जुग मैं सुख वासी। से मुकत पए जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिन का पौ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करे हर पूजा जी, तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमरत सासत जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वड अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू निःचल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैंडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हो पाई। रहाऊ सब तेरी तू सबने त्याया, जिसनों कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया।

मूरख मुगधा जन्म भया, प्रणवत नानक तिनकी सरणा, जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कित ना काम, मिल साध संगत पाज केवल नाम। सरंजाम लाग पव जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाऊ।

नफरत पर। हमरे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दे मुहे बचावह। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सब करतारा।

त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम के पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय।

तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, बेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवार।

जक्षण उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बाद कियो। काट काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाना काट काट के पट पट की जाना। जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देहे तार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत पेता जाको पेव न पाव।

निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद है जेती, बरनत पेन पेन तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा।

अंडज जे रज से तज कीनी उत पूज खान बहुरे राज दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभ

दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवा मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट

कर्म सब होई, दुष्ट शाह श्वय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते।

को आँख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण पुराण, अनेक कहे मत एक ना मानेओ। सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु पे।

जिसका सबस आधारो, जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वसत तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवां।

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, उथै तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरै छड जाहे, पौ जल बिखम असगाहो गुर सबदी पार पाहे। जिनकौ लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो किरपाल संभाले साहे साहे, व्यर्था कोई न जाए जे आवै तो दयाहे। सलोक महला पंजवां अंतर।

उपमा महान। पूरे सतगुरु जगत गुरु वालिये कुल आलम जुग जुग अटल सचे पातशाह दसां पातशाह।

कर लिया जावे, कीता नहीं जांदा, जे कर लिया जावे बस फिर ता श्रेष्ठ सुख ही सुख ने। जीवन विच आनंद ही आनंद है,

उपदेश ओदी कमाई करे तां डर कटे जांदे, भय दूर हो जांदे, भय दूर हो गए, गुरु दी कृपा हो गई। पर शब्द द्वारे संसार समुंदर तों वी प्राणी तर जांदा है। कादे नाल?

प्यास लगी है, दर्शन करके मेरी तृप्ति होवेगी, दर्शन करके ही मेरी प्यास मिटेगी। हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपता है जो त्रिखा वंतु बिन नीर, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, उम क्यों हियो मिलन प्रब ताई। हिरदा उछल रहा है, कदों प्यारे दे दीदार हुंदे ने, कदों

जिन्हें निश्वास श्वास ऐसे महान सूर भी ज्योंदियां जी ही गुरु तो कुर्बान हो गए, ऐसियां रूहां सदा जीवनियां। किसी का मरना भी ऐसा हो गया, सद जीवन मिल गया। किसी का जीना भी ऐसा हो गया, मृतक कहिए नानका जी प्रीत नहीं भगवंत। तुरिया ते फिरदा है, कारोबार ते करदा है, पर जीवन विच ओ रस नहीं बन सकया, ओ टिका नहीं बन सकया, जीवन विच ओ तब्दीली नहीं आई जिस वास्ते जीवन मिलया सी। तृप्त पई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम त्याया। भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई तारू सिंह जी, ऐसी महान सूरवीर शरीर दे टुकड़े भी हो गए, बिना खोपड़ी तो बाई बाई जी दिन वाहिगुरु जपते रहे। असी चंगे भले भी सानू वाहिगुरु कहना औखा लगता है, बाकी सारा कुछ चंगा लगता है, पर जदों धर्म दी कमाउण दी वारी आउंदी है फिर मन अवेसला। पता नहीं क्यों कहंदे ने कलयुग तैनू इस पासे जाने नहीं दिंदा, किते लाहा ना कट ले। कुछ रूहां दी कमाई ऐसी हो जाती है जिउंदे ने संसार विच, कलयुग दी चादर नूं भी क्रॉस कर जांदी है, उस नूं फाड़ के भी नाम वाले पासे लग जांदी है। 1430 अंग गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महाराज, किते जानवरां दी उदाहरण, किसे किते राजयां दी उदाहरण, किते वड्डे वड्डे राजयां दी उदाहरण। सिर्फ इस वास्ते तैनूं सोझी मिल जाए, सिर्फ इस वास्ते कि तेरे हाथ कुछ नहीं है। काठ की पुत्री कहां करे बपरी, खिलावन हारो जाने। कठपुतली नचाउण वाला ही जानदा है, ओह जी सोच बना देंदा है, ओह जी मोह माया वरता देंदा है, खिच पै जांदी है, उधर नूं तुर पैंदा है। सच्चे पातशाह मेरे हाथ विच ते मेरे श्वास भी नहीं, मैं कोशिश करां रोकण दी, शरीर नूं पीड़ा हो जाती है, दर्द होने लग पैंदे ने, बाकी गल्लां दूर। कहंदे ने तेरे चल रहे साह भी तेरे हाथ बस विच नहीं, आप ही चल रहे ने। तैनू ते बस इन्ना उदम दिता, तोड़ के बुर के मुख विच पाउणी, अगे किने पचाउणा सिस्टम निरंकार ने बनाया। जे बंदा उस पासे सोचण लगे पए ना, फिर उसे दिन अपच हो जाएगी, सिस्टम दी गड़बड़ हो जाएगी। कहंदे ने जो जो तेरे हाथ विच है तू ओही कर सकदा है। ऐसी महान रूहां सदा जिउंदियां ने, जिन्हां नूं सदा ही नमस्कार।

अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेशो, पार ब्रह्म निकट कर पेखो, सास सास सिमर गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद, आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करहो, साध संग अग्न सागर तरहो, हर तन के पर लेहो पंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भाजो परमानंद। नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो, चित चितवहु नारायण एको, एक रूप जाके रंग अनेको, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का हे आधार, उत्तम सलोक साध के बचन, अमलीक लाल एह रतन, सोनत कमावत हो तो उधार, आप तरै लोकै निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाकै मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहद वाजै, सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजै, प्रगटे गोपाल महा तो कै माथे, नानक उधरे तिन कै साथे, सरण जोग सुन सरण आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए, मिट गए बैर भये सब रेन, अमृत नाम साध संग लैन, सुप्रसन्न पय गुरुदेव, पूर्ण होए सेव की सेव, आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक ने बही खेप हमारी, प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होते निधान, सर बिछाता की पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए अस्थान, बहुर न होवे आवन जान, हर तन खाट चलै जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए, खेम शांत रिद नाव निद, बुद्ध ज्ञान सर्ब तह सिद, विद्या तप योग प्रभ ध्यान।

0: नानक एह गुण नाम सुख मनी, सब ते ऊचता की सोभा बनी। नानक एह गुण नाम सुख मनी, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन बिसराम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ।

कर्ता पुरुष निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह सुसियाण पा लख होहे ता इक न चलै नाल किव सचियारा हुई है किव कूड़ै टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्सीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई

सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पियो सी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिनु पाई कर कर वेखै कीता अपना जीव चिष्टि वडियाई जो दिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाहो साहा पातशाहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शर्म पद झोली ध्यान की करह विभूत किंता काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जगजीत आदेश सह आदेश आद नील नाद अनाहत जुग जुग एक वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट कटवा जहनाद आप नाथ नाथी सब जाकी रित सदे अवरा सा संजोग जोग दुकार चला वह लिखे आ वह भाग आदेश जिसे आदेश आद अनिल अनाथ अनाहत जुग जुग एको वेश एक माई जुगत वे आई तिन चेले परवाणु एक संसारी एक भंडारी एक लाई दीवान जीव तिस भावै।

लेंगे। भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे। तोर अरीन मरोर मुवासन मातिम तंगन मान मलेंगे। श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बरियार बचार सार की तार पछैया। तोरत देश मलिंद मुवासन मातिक जान के मान मलैया। गाड़ी गड़ान के तोड़ नहार सो बात नहीं चकचार लवैया। साहिब श्री सबको सरनायक जाचक नेक सुवेक दिवैया। दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भुवान जपेंगे। जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे। पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के वो पुंज कपेंगे। साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब अवलोक चपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र निराद जो त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजा दिक दान अनेक सुवंबर साज भरेंगे। ब्रह्म ही सर विष्णु सची पत अंत पसे जम्फास भरेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस हैं भगते नर फेर न देह तरेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो। नाथ फिर लिये सात समुन्द्र लोक गयो पर लोक गवायो। बास की उभ के आन सु बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह सुबितायो। साच कहूं सुन ले सुबह जिन प्रेम की उतिन ही प्रपायो। काहू ले पाहन पूज तरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर वाची दिशा मह काहू पछा कुशी सिनिवायो। को बतान को पूजित है पस को मेरे तान को पूजन तायो। कूर क्रियार जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।

श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती, चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा। पूर्ण हुए चित की इच्छा, तब चरणन में रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम काबहु। आप हाथ दै मुहे बचावो, सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सबे करतारा, मूरच्छा निज कर दै करिये। सब बैरन कुआ संघरिये, पूर्ण हुए हमारी आशा। तूर भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं। जो बर पचाऊं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारी तारी है। चुन चुन सत्तर हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे वरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री आस तुझ जु कर हो रच्छा। राख ले हुम रखन हारे, साहिब सन सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूतियो। जमन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दै जचन पजायो। आदंत कै अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मुँह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरे अस्थूला, सफर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, कट कट के पट पट की जान। जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तर्क तब दे अपारा। जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन सिर सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद नील नाद संभु। ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आप अपनी बुद्ध है जीती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लका न जाए पसारा, के विसुजा प्रथम संसारा। एक रूप अनुप स्वरूपा, रंग भयो राव कई कूपा। अंड जेर से तजगिनी, उत्पुज कान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हवे बैठा, कहूँ सिमट पे शंकर कैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगा स्वरूप स्वयं पव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख वार सिख संगरो। दुष्ट जिते उठव तुत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ दव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट नह है। रच्छा होए ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला। कृपा दृष्टन जाहि निहरे हो, ताके ताप तनक में हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छा छव सके न कोई। एक बार तिन तुम्हें सुमारा, काल फास ते ताए उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दुख ते रहा। खड़केत में शरण तिहारी, आप हाथ दै लिहो उबारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। कृपा करे हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को क्षय करता। श्री आशुतोष जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बाचद फल पावै सोई, दुख न तिसे व्याप्त गोई। अड़िल सुने गुंग जो याहे सुरस न पावई। सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रहे। हो जो याकी एक बार, चौपाई को कहे चौपाई। संबत सत्रह सहस पनी जय।

मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है, वो भेद कहे हम एक न जानियो। श्री यशपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहूँ

दिन हरल विलागे जागत रहन विहानी। माता गुजर में प्रतपाल करी, सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है, विडदाता जी अगन में आहार पहुंचावे। ओसनु कहि न सकी, जिसनु अपनी लिव लावे, अपनी लिवा पेलाए, गुरमुख सुदा संभालीए। कहे नानकी विडदाता, सो क्यों मनो विसारी है, जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया, माया गुण सभिको जेही करतै केल रचाया। जात इस बाणा ता जमिया, परिवार भला पाया, लिव छुटकी लगी तिस ना माया मरवरकाया। इ माया जितर विसरै, मोह भजै भाव दूजा लाया, कह नान गुर प्रसादी जी ना लिव लागी तिन विचे माया पाया। हरियाप मुल कह, मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए, किसै विटहु रहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै, तिसनु सिर सौपीऐ विचो आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे, हर वसै मन आए। हरे आप मुल कह, भाग तिना के नानका, जिन हर पल्लै पाए। हर आस मेरी मनवण जारा, हर आस मेरी मनवण जारा, सतगुरु तेरा सुजानी। हर हर नित जपे हो, जी हो लाह खटे हो, दिहाड़ी हो धन तिना मिलया, जिन हर आपे पाणा। कह नानक, हर आस मेरी मन हुआ बनजारा। ये रसना तू अन रसरा च रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए, होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए। हर रस पाए पल्लै पीए, हर रस बौड़ न तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए। सतगुर मिले जिस आए, कह नानक होर अन रसा विसरे, जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया, हर तुम मैं जोत रखी, ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विच, ता तू जग में आया। हरे आपे माता आपे पिता, जिन जियो पाए जग तिखाया, गुर प्रसादी बुझिया, तन चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नान सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ भया प्रभागम सुनिया, हर मंगल गाओ सकी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल लित सकी, शोक दुख न व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे, अपना फिर जापे। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभा मिलिया, करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया, इस जग में आए कह, क्या तुझ कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुझ शरीरा, जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन न वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया, पूरब लिखिया पाया। कह नानक यो शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। हे नित्र हो मेरे हो, हर तुम मह जोत तरी, हर बिन वरन देखो कोई, हर बिन वरन देखो कोई, नदरी हर निहालिया। यो वे संसार तुम देख दे, यो हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। गुरु प्रसादी बुझिया, जा वेखा हर एक है, हर बिन वरन कोई। कह नानक नित्र अंध से, सतगुर मिले दिव दृष्ट होई। ए श्रवण हो मेरे हो, साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस मानी, सतलख विडानी। ताकि गत कही न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो। साचै सुनै नो पठाए, हर जियो गुपांद रखै, वाजा पौन वजाया। वजाया वाजा पौन नौ द्वारे, प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए पावनी, कना दसवां द्वार दिखाया। तह एक रूप नव नव निध, तिस दांत न जाई पाया। कह नानक हर प्यारे, जीव गुफांद रखै, वाजा पौन वजाया। एहो साचा सोहिला, साचै कर गावहु, गावहु तां सोहिला कर साचै, जिथै सदा सच त्यावहे, सचो त्यावहे, जात दुभावे, गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सत्सभना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे। कह नानक सच सोहिला, सच्चे घर गावहे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, पुत्रे सगल विसूरे। दुख

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहिया पार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

मूर्ख पंडित हिकमत उजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख दुआ जती सदावे जुग न जाने छड़ बहे करबार सबको पूरा पे होवे कटना कोई आखे पित परवाना पिछे पाई ताना नानक तोलिया जापे महला पहला।

पत उपजय साला ही सच सूत दरगा अंदर पाई है तगना तुटस पूत। महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी।

शरीर स्वसत खीन समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव ज्योत रूप हरियाप गुरु नानक कहायो

जगत गुरु गुरु गरीब निवाज। सचे पातशाह जी धन धन आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की छत्र छाया हेठ हजूरी अंदर गुरु की साजी अते निवाजी होई। गुरु प्यारी गुरु सवारी अति सत्कार योग साध संगत जी। सतगुरां दी अपार बख्शिश प्राप्त होई है। अमृत वेले दा सुभागा समा गुरु बख्शिश द्वारे प्राप्त होया। कुरबाणी तन्ना गुरसिखा पिछल राती उठ बहंदे। कुरबाणी तन्ना गुरसिखा अमृत वेले सार ना वंदे। कुरबाणी तन्ना गुरसिखा एक मन होए गुर जाप जपंदे। कुरबाणी तन्ना गुरसिखा साध संगत विच जाए जुड़ंदे। श्री मान सत्कार योग भाई साहब जी भाई गुरुदास साहब जी बहुत प्यारे अमृत वचन कलम बंद करते ने भी उन्हां गुरसिखां तों कुरबान जाइए जो पिछली रात उठ के चौंकड़ा मार के गुरु गुरु दे जाप नूं जपदे ने। फिर उन्हां गुरसिखां तों सदके कुरबान जाइए जिहड़े अमृत वेले गुरु की बख्शिश द्वारे शरीरक इशनान पाणी नाल और अंदर दा इशनान गुरु दे नाम नाल करदे ने। कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा। कोट बिगण लाथे प्रभ सरना प्रगटे भले संजोगा। प्रभ बाणी शब्द सो पाखिया गावो सुनो पढ़ो नित पहाई गुरपूरे तू राखिया। साचा साहिब अमित वडाई भगत वशल दयाला। संतां की पैज रखदा आया आद बिरद प्रतपाला। हर अमृत नाम भोजन इत पुंचो सर्ब वेला मुख पाव हो। जरा मरा ताव सब नाठा गुण गोबिंद नित गाव हो। नेता प्रति मेरे वाहिगुरु जी दे गुणा नूं गाउंदे ने। उन्हां प्यारे गुरसिखां तों कुरबान जाइए साध संगत विच आके गुरु की अमृत बाणी सरवण करदे ने। फिर गुरु बख्शिश द्वारे शब्द सुरत दा अभ्यास करदे ने। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਸੱਜ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੋਪੰਨ ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਪਹਰ ਪਹਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ।

कोई ख्वार हो ऐसा मिलेंगे बजे शरण जो हो। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तेरे पा जो शरदा कर सेव दे गुरु पार उतारना खंडा जाके हाथ में कलगी सो है।

मानता ने अंतर चरण ते आया, हर सुख निदान नानक दास पाया। तनासरी महला पंजवां।

किन्हू गुरमुख हुए पछाना। तनासरी महला नौवां तेह जोगी कौ जुगत न जानो। लोभ मोह माया ममता फुन जिह घट माहे पछानो। राव पर निंदा उस्तत नह जाके कंचन।

मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरूं गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजू पस ज्यों।

गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुगै नहीं दूरे हर रस चोग चुगै प्रभ पावै सर्वर में हंस प्राण पत पावै क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबै मैल न जाए राव रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ भय निरंकारी मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवण जान रहे गुर राखे सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मैं हंस हंस मैं सागर अकथ कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नार न पुरख।

हठ ना पतीजै ना बहु भिखै, घड़ भांडे जिने अमृत पाया। प्रेम भगत प्रभ मन पतियाया, पढ़ पढ़ भूलै चोटा खाही। बहुत सियानप आवह जाहे, नाम जपै

वेणीता संगम सत सते आराध एकंकार साचा नित दे चढ़ै सुआया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कह सबको एके वड़िया की है हौ मूरख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी।

सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन गूढ़ते अधिकाई रहाउ। बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई।

भोगन्ति अरसो भन्ति जल जोगन्ति बहुपात पचा सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दिन को राख लिया काटिया रोग महा सुख पाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे न लागे ताता चला ए सब तब जिन्हें शरण के तिहन जिन्हों की विचार दर्शारण के पाई उस महानुप्रभु के नाल जुड़िया रहे जिस महानुप्रभु की कृपा सदका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कवहूं व्याप है उस महानुप्रभु के चन्ना नाल जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख के नाल वर्तित होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई फलों चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरुण प्री सत्कारियो ज्ञानी वरिंद्र पाल सिंह जी उन्हां पासो अज दे जिहड़े हन चल रही गुरबाणी दी विचार ओ सरुण प्री गुरु इतिहासिक इतिहास सरुण प्री दास फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवे। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय, फिर अंगद गुरते अमरदास। रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है।